जन्म मरण दुख जाई सतनाम वाहिगुरु साहिब जी गौर सिखो हों गौर सिख है पीर पीरो हों कोई शब्द सुरत चेला गुरु परमेश्वर सोई गौर सिखो हों गौर सिख है पीर पीरो हों कोई

बहुत जन्म बिछड़ी थी माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो। चिर पयो दर्शन देखे गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। जप जप जीमा सतगुर नाओ वाह जी का खालसा वाह जी की फतेह। सुख हो टल गुरु सेविया

नमोंगीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बाद्य अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकम बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वर परम रूपे नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे नमो राज राजेश्वर परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो सा साव नमो भू भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगि नमस्तम स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता दूर दर्दंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वर प्रोष पालन सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अभेदी अनाम अकामंग समस्त उपराजी समस्त धामंग तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेस हैं पुजंग पर्यात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्त निदाने नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राय राय नमो स्वाजे नमो स्वाय नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तम प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल तरभंग लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग प्राणं सर्वं भोक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं देवं सर्वं काले रुआल छन त्वे प्रसाद आदरूपनाद मूर्त जोन परख पार सर्वमंत्र मान देवा पेवे आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरखोदार मूर्ता जो नादा सेख दे सब न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा

एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेलने अंत को फिर एक दे भेव न जा नहीं जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पास हो जाने के जे तात्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरा चत्र चकमान ही पुर तीन लोग चौदह के विखे जग जा पई लोग चौदह के बिखाए जग जा पई जे जा पाद देव अनाद मूर्त था प्यो सब है जे था पारम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्व सर्वस्वच्यो स्वयं पवगण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरखा देश धर्म धाम सुपरम रहत भूत अलख अपे संग राग नरंग जा कह जय जात पात नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम आप रूप अमीक अनोस्तत एक पुरख अवधूत गर्भगंजन सर्वभंजन आदरूप असूतांगहीना पंगनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वतेन पेक सर्वशास्त्र न जाने ने रूप रंग अरेख परम वेद प्राण जा कह नेत पाक नेत कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आवही बहुचित मदपार छंद त्वय प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपहो प्रकाश निस्न अनाज साजान बाहु साहान साहु राजान राजपा नान पान।

चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्रह न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काय अजन्म न जाय न चित्र न मित्र प्रे है पवित्र प्रति सयादि सयादृश्य कृष्ण भगवती शांद त्वे प्रसाद कहते कि आशिज दिस क्या पिज पिसा क्या गंज कर मैं क्या पंच पर मैं क्या पिज लोक है क्या आदित सुख है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत कर्ण है कि राजन प्रवाह है कि धर्म तुझा है कि आसुख वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जगतं कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपावन उप है कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रम गहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक में ऐब है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुनाह है कि शाहन शाह है कि कारण पुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज क्रीम है कि कर्म क्रीम है कि सर्वंग गली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेस है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र नीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र भाव हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेस है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र बाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र भेखी कि सर्वत्र भेखी कह सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है सर्वत्र राज है सर्वत्र सुख है सर्वत्र पोख है सर्वत्र त्रण है सर्वत्र प्राण है सर्वत्र देश है सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सर्वत्र दान के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रदान है सर्वत्र जापी है सर्वत्र थापी है सर्वत्र भान है सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है सर्वत्र चंद्र है सर्वं कलीमे के परम फहीमे के अकल आला मैं के साहिब कलाम है के हुस्न बजु है तमाम रुजु है हमेश और सलाम है सली खत्मुदा में गनी मुट शिकस्त है गरीब उल परस्त है बिलंद उल मकान है जमीन उल जमान है तमीन उल तुमा मेरे जुल निदान है हरी फुलाजी मेरे जैक चकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अभंग है आजी दुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरोकता स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है संयोगत सुधा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त

प्रकाश गुण गण प्रणाम नल थल मुदा मन छजियांगा स्ने अपंग उपमा पारगत मित उदार जल थल अमन दसवस अपन जल थल महन दसवस बियंतन भवनास्त्र तर तुरास आजान बाहु कसदाहु अंकार आद कथनी अनाद खल खंड के आल गुर मरे अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम छिगात अजिजना बात चंदगात रंज बात अर टुट भंडार ठट अपारा डीठ धर्मत ढीठ कर्म अणवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना शंत वै प्रसाद करुणालय है अरकाल है खलखंडन है महमंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है धृत के धरन है जग के कर्ण है मनमानी है जग जानी है

विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा करहे अजपा जप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजवा कृत है अमृता अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्पन है करुणा ने नृप नायक है सर्पायक है पपंजन है अर्गंजन है रिप्तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य।

स्वरूपे नमो परम तत्व तत्व स्वरूपे नमो योग योग्य नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय अनादम्य भूते कलंकार रूपे अलंक

0: ज्यों त्रिलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्ची पात
1: अंत फसे जम्फास परेंगे, जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फेर न देत रहेंगे।

बंद दुष्टन के हंता तुम्हों पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की उमेदराज, ब्रह्मा जुथी उजमन काल, सब लोग सुवारा नमस्कार हैता है हमारा। जमन काल सब जग बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट

कहु फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयु शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए चंपव या जुगा स्वरूप सुयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करूरन काता। जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्या है ताके काल निक नहीं है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि ने हरि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्छा श्व सके न कोई।

सिमृत शास्त्र वेद सब भेद कहे हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो है बखान्यो। दोहरा

अनंत है या मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तब पाया, सहज से ती मन वजियां वादा हियां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावनों आईयां।

इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक केहू शरीर प्रवान हुआ।

0: पाप पुण्य कै सलेप ना लागे, घट घट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सगतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशल अशेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा किरपाल। ताकि गतमित कछु ना पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा। संतन कै बलिहारे जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवक सब गए, संत शरण बड़ भागी पए। राम जपत कछ बिघन ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल। काम क्रोध स्तन ते जाए, राम रतन वसे मन आए। सफल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म नेट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहूं सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गुण अष्टपदिया महला पंजवा। कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कर नमस्कार पूरे गुरदेव, सफल मूर्त सफल जाकी सेव। अंतर जामी परख विदाता, आठ पैर नाम रंग राता। गुर गोविंद गुरु गोपाल, अपने दास को राखन हार रहाओ। पातशाह सा उमराओ पति आए, दुष्ट अहंकारी मार पचाए। निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग। संतन कै मन महा आनंद, संत जपै गुरदेव भगवंत। संगत के मखूजल पए, सगल थान निंदक के गए। सा साजन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर वे परवाहे। सगल पै मिटे जा की सरन, निंदक मार पाए सब तन। जन की निंदा करे न कोई, जो करे सो दुखिया होए। आठ पैर जन एक त्याए, जमुआ ताके निकट न जाए। जन नरवैर निंदक अहंकारी, जन पल माने निंदक वेकारी। गुर के सिख सतगुरु त्याया, जन उबरे निंदक नरक पाया। सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरतै हर द्वारे। जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सर पर जाए। नी तरिया सतगुर तर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जाके सिमरन पैज सवारी। राग गौंड बाणी भगता की, कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिले के सुनिए कहिए, मिले संत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चखमारी। बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा। कहो कबीर शूशा कट बोले, परया होए सु कबू ना डोले गौंड। नरु मरे नर काम ना आवे, पशु मरे दस काज सवारे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ। हार जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कास का पूला। कहो कबीर तब ही नर जागे, जमका डंड मूंड मैं लागे गौंड। आकाश गगन पाताल गगन है, चौदिस गगन रहायले। आनंद मूल सदा परखोतम, कट बिन से गगन न जायले। मोहे बैराग पयो, एहो जियो आए कहाँ गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहाँ ते कीन रे। कर्म वद तुम जियो कहत हो, कर्मै कैन जियो दीन रे। हर मैं तन है, तन मैं हर है, सर निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गौंड बाणी कबीर जियो की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोह मूंड मह मार्यो। हस्त पा कै चीसा मारे, या मूर्त कै हो बलिहारे। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महाप्त तु डारो काट, इसे तुरहो कहलो साट। हस्तना तोरे तरे त्यान, वाके हृदय बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर को दीना। कुंचर पोट ले ले नमस्कारे, बूझी नाही काजी अंधियारे। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजूना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पाद में जानकी जिंद गोंड। ना एहो मानस ना एहो देव, ना एहो जति कहा वैसे ओ। ना एहो जोगी ना अवधूता, ना ए समाए न काहू पूता। या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत न को उपाई रहाओ। ना एहो गिरही ना उदासी, ना एहो राज ना भीख मंगासी। ना इस पिंड न रख तू राती, ना एहो ब्राह्मण ना एहो खाती। ना यो तपा कहावे सेख, ना यो जीवे ना मरता देख। इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे सोई पद खोवे। गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागद पर मिटे न मांस। गुण टूटे तागे निकुटी पाण, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूज बिचारे फूए फ्याल, ए मुंडिया सिर चढ़ बो काल। एहो मुंडिया सगलो द्रव खोई, आपद जात नागसर होई। रहाओ तुरी नारकी छोडी बाता, राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया आंदन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट। मूड़ पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूढ़त की टेक। सुन अंदरी लोई बै पीर, इन मुंडियन पै सरन कबीर। गौंड खसम नरे खसम मरे तो नार ना रोवे, उसर खवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश, आगे नरक ईहा भोग बिलास। एक सुहागण जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सुहागण गल सोहै हार, संत को बिख बिकसे संसार। कर सिगार बहे पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बिचारी। संत पाग हो पाशे परे, गुर प्रसादी महरों डरे। साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण। हम तिसका बो जान्या प्यो, जब हुए कृपाल मिले गुरदेव। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार के अंचल लरी। गोंड गृह शोभा जाके रे नाहे, आपत पहिया खूदे जाहे। वाके अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागण लागे दोख। तन सुहागण महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत। रहाओ सुहागण कृपण की पूती, सेवक तज जगत सो सूती। साधु कह ठाडी दरबार, सरन तेरी मोको निस्तार। सुहागण है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जौलग प्राण तौलग संगे, नाहे त चली बेगी उठ नंगे। सुहागण पवन त्रै लिया, दासियठ प्राण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा बिशन महेसर बेदे, बड़े पूत राजे है शेदे। सुहागण उरवार ना पार, पांच नारद के संग विद्वार। पांच नारद के मिटवे फूटे, कह कबीर गुर कृपा छूटे। गौंड जैसे मंदर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे। कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे। जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं खेते। रहाओ जैसे हल हर बिना जमीने बोये, सूद बिना कैसे मणि परोये। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अवगत जाइए। जैसे मात पिता बिन माल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई। कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन ने लीजे फेरी, खसम दुहागण तज ओहेरी। कहे कबीर एक एक कर करना, गुरमुख होए बोहर नी मरना। गोंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे। कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बो पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार। रहाओ नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठना पतिये परचे साचे। इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सोदे, पांच पलीते को प्रबोधे। नव नायकी भगत बछाने, सो बजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे। कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अत रूप चखन। गोंड धन गोपाल धन गुरदेव, तन अनाद भूखे कमल टहकेव। तन संत जन ऐसी जानी, तिन को मिलबो सारग पानी। आद पुरख ते हुए अनाद, जपिए नाम अन्न के साद। रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे के संग नीका वन। अन्ने बार जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे। छोडे अन्न करे पखंड, ना सुहागण ना हो रंड। जग में भगते दूधा तारी, गुप्ती खावे बटका सारी। अन्ने बिना ना होए सकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। कह कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या। रा गोंड बाणी नाम दियो जी की, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जगने तुला परखदाने, प्राग इसनाने तो ना पुजे हर कीर्तनामा। अपने रामे भज रहे मन आलसिया, रहाओ गया पिंड परता। बनारसिया स्वस्ता मुख बेद जतर परता, सगल धर्म अष्टा। गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता। ਸਿਵਾ ਸਖਤ ਸਬਾਦਿੰਗ ਮਨ ਛੋੜ ਛੋੜ ਸਕਲ ਭੇਦਿੰਗ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾਮਾ ਤਰਸ ਭਵ ਸਿੰਧ ਗੋਡ ਨਾਦ ਭਰਮੇ ਜੈਸੀ ਮਰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਂ ਤਜੇ ਵਾਕੂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸੇ ਰਾਮਾ ਐਸੇ ਹੇਰੋ ਰਾਮ ਛੋੜ ਚਿਤ ਅੰਤ ਨਾ ਫੇਰੋ ਰਹਾਉ ਜਿਉਂ ਮੀਨਾ ਹੇਰੇ ਪਸੁਆਰਾ ਸੋਨਾ ਗੜਤੇ ਹੀਰੇ ਸੁਨਾਰਾ ਜਿਉਂ ਬਖਈ ਹੇਰੇ ਪਰਨਾਰੀ ਕੌਡਾ ਡਾਰਤ ਹੀਰੇ ਜੁਆਰੀ ਜਹਿ ਜਹਿ ਦੇਖੋ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਮਾ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਧਿਆਵੈ ਨਾਮਾ ਗੋਡ ਮੋਕੋ ਤਾਰਲੇ ਰਾਮਾ ਤਾਰਲੇ ਮੈਂ ਅਜਾਨ ਜਨ ਤਰਬੇ ਨਾ ਜਾਣੂ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ ਬਾਹ ਦੇ ਰਹਾਉ ਨਰਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਖ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਨਰਤੇ ਉਪਜ ਸੁਰ ਕੋ ਜੀਤੋ ਸੋ ਅਵਖਦ ਮੈਂ ਪਾਈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਰਦ ਟੇਕੇ ਨੈਕ ਟਿਕਾਬੋ ਮੋਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਵਲਿਮ ਬਹੁਤ ਜਨ ਉਦਰੇ ਨਾਮੇ ਕੀ ਮਤ ਇਹ ਗੋਂਡ ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੇ ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਰਹਾਉ ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੂਟਲਾ ਥਣ ਚੋਖਤਾ ਮਾਖਣ ਕੂਟਲਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਤੇ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਆ ਜੈਸੇ ਵਿਖੇ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ ਐਸੇ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ ਜੈਸੇ ਤਾਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਾਮਾ ਤੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ ਰਾਗ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਮਿਟੇ ਸਭ ਧਰਮਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਊਤਮ ਧਰਮਾ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਜਾਤ ਕੁਲ ਹਰੀ ਸੋ ਹਰ ਅੰਦਲੇ ਕੀ ਲਾਕਰੀ ਹਰੇ ਨਮਸਤੇ ਹਰੇ ਨਮੈ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਜਮੈ ਰਹਾਉ ਹਰ ਹਰ ਨਾਕਸ ਹਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਜੈਮਲ ਕੀਓ ਬੈਕੰਠ ਉਦਾਨ ਸੂਆ ਪੜਾਵਤ ਗਨਕਾ ਤਰੀ ਸੋ ਹਰ ਨਹਿਨੋ ਕੀ ਪੂਤਰੀ ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਪੂਤਨਾ ਤਰੀ ਬਾਲਕਾ ਤਨੀ ਕਫਟੈ ਭਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਰੋਪਤ ਸਤੁਦਰੀ ਗੌਤਮ ਸਤੀ ਸਿਲਾ ਨਿਸਤਰੀ ਕੇਸੀ ਕੰਸ ਮੰਥਨ ਜਨ ਕੀਆ ਜੀ ਦਾਨ ਕਾਲੀ ਕੋ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਣਵੇਂ ਨਾਮਾ ਐਸੋ ਹਰੀ ਜਾਸ ਜਪਤ ਪੈ ਹਬਦਾ ਟਰੀ ਗੂੰਡ ਪੈਰੋਂ ਪੂਤ ਸੀਤਲਾ ਤਾਵੈ ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਸਾਰ ਉਡਾਵੈ ਹੋ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਹਿਹੋ ਆਣ ਦੇ ਬਦਲਾਵਣ ਦਹਿਹੋ ਰਹਾਉ ਸਿਵ ਸਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ ਬਰਦ ਚੜੇ ਡੋਰੂ ਟਮਕਾਵੇ ਮਹਾ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਨਰਸੇ ਨਾਰ ਹੋਏ ਔਤਾਰੇ ਤੂੰ ਕਹੀ ਅਤ ਹੀ ਆਦਿ ਭਵਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾ ਛਪਾਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਮਹ ਗੌਮੀਤਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਓ ਕੈ ਗੀਤਾ ਬਿਲਾਵਲ ਗੋਂਡ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਊ ਰੇ ਰਹਾਉ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਕਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਥੀ ਲੈ ਕਰ ਠੇਗਾ ਟਗਰੀ ਤੋਰੀ ਲਾਂਗਤ ਲਾਂਗਤ ਜਾਤੀ ਥੀ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾ ਦਿਓ ਤੌਲੇ ਬਲਦ ਚੜਿਆ ਆਪ ਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਮੋਦੀ ਕੇ ਕਰਖਾਣਾ ਪਾਕਾ ਵਾਕਾ ਲੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਥਾ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋਪੀ ਆਪ ਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ ਕਰਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੁਆਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ ਹਿੰਦੂ ਪੂਜੇ ਦੇਹਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ ਨਾਮੇ ਸੋਈ ਸੇਵਿਆ ਜੈ ਦੇਹਰਾ ਨਾ ਮਸੀਤ ਰਾ ਗੋਂਡ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਕੰਦ ਮਕੰਦ ਜਪੋ ਸੰਸਾਰ ਬੇਨ ਮਕੰਦ ਤਨ ਹੋਏ ਔਹਾਰ ਸੋਈ ਮਕੰਦ ਮੁਕਤ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਮਕੰਦ ਹਮਰਾ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀਵਤ ਮਕੰਦੇ ਮਰਤ ਮਕੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਕੋ ਸਦਾ ਆਨੰਦੇ ਰਹਾਉ ਮਕੰਦ ਮਕੰਦ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਪ ਮਕੰਦ ਮਸਤਕ ਨੀਸਾਨ ਸੇਮ ਮਕੰਦ ਕਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸੋ ਮਕੰਦ ਦੁਰਬਲ ਤਨ ਲਾਦੀ ਏਕ ਮਕੰਦ ਕਰੇ ਉਪਕਾਰ ਹਮਰਾ ਕਹਾ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਮੇਟੀ ਜਾਤ ਹੂਏ ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਮਕੰਦ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਾਰ ਉਪਜੋ ਗਿਆਨ ਹੁਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੀਨੇ ਕੀਰਦਾਸ ਕੋਹਰੇ ਵਿਦਾਸ ਅਬ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜਪ ਮਕੰਦ ਸੇਵਾ ਤਾਹੂ ਕੀ ਗੋਂਡ ਜਿਉ ਅਰਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਜਿਉ ਦੁਆਦਸ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਵੈ ਜਿਉ ਉਹ ਕੂਪ ਤਟਾ ਦਿਵਾਵੈ ਕਰੇ ਨਿੰਦਸਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ਸਾਧਕਾ ਨਿੰਦਕ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਸਰ ਪਰ ਜਾਨੋ ਨਰਕ ਹੀ ਪਰੇ ਰਹਾਉ ਜਿਉ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ ਖੁਲਕੇਤ ਅਰਪੇ ਨਾਰ ਸਿਗਾਰ ਸਮੇਤ ਸਗਲੀ ਸਿਮਰਤ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੇ ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਕਮਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਾਵੈ ਪੂੰ ਦਾਨ ਸੋਭਾ ਮੰਡਪ ਪਾਵੈ ਆਪਣਾ ਬਿਗਾਰ ਬਰਾਂਡਾ ਸਾਂਢੇ ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਹਾਂਡੇ ਨਿੰਦਾ ਕਹਾ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰਾ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਨਿੰਦਕ ਸੋਧ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਾਪੀ ਨਰਕ ਸਿਧਾਰਿਆ ਜੋੜ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪ ਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਯੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਈ ਪੜਤਾ ਸਹਿਸਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਪੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਪਮਾਲੀ ਲਾਗੈ ਤਿਸੇ ਧਿਆਨਾ ਆਵਹੇ ਕਵਹੇ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਪਛਾਣਾ ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख अग्ञान सन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ। कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है, कबू जाए पाए आले, लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारे कुंडा पाले। मरन लिखाए मंडल में आए, जीवन साजे माही, एक चले हम देखे स्वामी, पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का पाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जी तू देवै अंते होए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही, जय जय देखा तै नर हरी, जीवन तल निवार स्वामी, अंध गो माया मन गाड़िया, क्यों करे उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर घट पीतर बसिया, जह पीतर घट पीतर बसिया, बार काहे नाही, तनकी सार करे नित साहिब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़े आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर, सतगुर मिले अंधेरा जाए, जय देखा तै रहा समाए। अंतर सहसा बाहर माया, नैनी लाग सबाणी, प्रणवत नानक दासन दासा, प्रताप हेगा प्राणी। राम कली महला पहला, जिद दर वसे कवन दर कहे, दरा पीतर दर कवन लहे, जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। कैन बिंद सागर तरिए, जीव त्यान मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रोरख वाला, आस अंदेसा दोय पट चढ़े, माया जल खाई पानी कर बाद्या, सतके आसन पर करहे। किंते नामा अंत न जाण्या, तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे। जब आसा देसा तब ही क्यों कर एक कहे, आसा पीतर रहे निराशा, तो नानक एक मिले। एंड बिद सागर तरिए, जीव त्या मर गए रहाओ। दूजा राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरे सिंगी, बाजे लोग सुने पत झोली, मंगण के ताई भीख्या नाम पड़े। बाबा गोरख जागे, गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन को धरती दीनी, एते गुण विसरे, सिद्ध साधक गैर जोगी, जंगम पीर पुरस बहतेरे। जेतन मिला त कीर्ति आखा, तामन सेव करे। कागद लून रहे कृत संगे, पानी कमल रहे, ऐसे भगत मिले जा नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सोन मछिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नंडोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले, आप तरे सगले कुल तारे। सो अदूत ऐसी मत पावे, अहनस सुन समाध समावे रहाओ। भिख्या पाई भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले, ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन मछिंदरा औदू निशानी, आसा माहे निरास विलाए, नहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगम सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए, दीख्या दारू भोजन खाए, शह दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सद भेटण को आए, नहचो दे वड़ियाई। गुरतार तारण हारिया, दे भगत पूर्ण अविनाशी, हो तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद साधक जोगी अर जंगम, एक सद जिनी त्याया, परसत पैर सिज्जत ते स्वामी, अखर जिन को आया। जाप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा, गुर परमेसर नानक पेट्यो, साचे शब्द ने मेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरतर लाइए एत, तन कर तुलहा लंगे जेत, अंतर पाहे तिसे तू रख, एहनस दीवा बले अथक, ऐसा दीवा नीर तराए, जत दीवे सब सोजी पाए रहाओ। अच्छी मिट्टी सोजी होए, ताका किया माने सोए, करनी ते कर चको टाल, ऐथे उथे नेब ही नाल। आपे नदर करे जा सोए, गुरमुख वेला बूझै कोए, तितकड़ दीवा नैचल होए, पानी मरे ना बुझाया जाए, ऐसा दीवा नीर तराए। डोले वाओ न बड़ा होए, जापे ज्यो सिंघा सन लोए, खत्री ब्राह्मण सूद के वैस, नृत न पाया गुणी सहंस, ऐसा दीवा बाले कोए, नानक सोपा रंगत होए। राम कली महला पहला, तुदनो निमन मनन तेरा नाओ, साच पेट बैसन को थाओ, सत संतोख हो वै अरदास, तां सुन सद बहाले पास, नानक बिरथा कोई ना होए, ऐसी दरगह साचा सोए रहाओ। प्राप्त पोता करम पसाओ, तूह देवे मंगत जन जाओ, ਤੂੰ ਦੇਵੇ ਮੰਗਤ ਜਨ ਚਾਓ, ਭਾਂਡੇ ਭਾਉ ਭਵੇ ਤੇ ਤਿਆਏ, ਤੁਰਤੇ ਛੋਡੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ, ਜਿਨ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਧਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਧਿਕਾਰ ਕਹੇ ਮੰਗਤ ਜਨ, ਮੰਗਤ ਮਨ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਦਰ ਕੀਆ ਬਾਤਾ, ਤੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਇਆ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਕਮਣ ਬੁਝੈ ਵਿਦ ਜਾਣੇ, ਉਤਪ ਚਲ ਤਿਆਪ ਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਤੱਤ ਪਛਾਣੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ, ਤਿਸਤੇ ਮੁਕਤ ਪਰਮਗਤ ਹੋਈ, ਰਹਾਉ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦਿਨੀਅਰ, ਉਸਨ ਸੀਤ ਵਿਦ ਹੋਈ ਸੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤਮ ਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ, ਬੁਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਮਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਮਨੁਆ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ, ਜੋ ਗੁਰਸਬਦੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੋ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੇ, ਐਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਲਾਜ ਛੋੜ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰਹਾਓ ਤੁਣ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਕੋਰਾ, ਮਣ ਮਾਨਿਆ ਹਰ ਅਸਮੋਰਾ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨਾਦ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਣ ਰਾਤਾ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ, ਤੈ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸਭ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਜੈ ਆਪ ਗਿਆ ਪਉ ਭਾਗਾ, ਗੁਰਚਰਨੀ ਸੇਵਕ ਲਾਗਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸ਼ਾਦਨ ਭੋਜਨ ਮੰਗਤ ਪਾਗੇ, ਖੁਦਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਜਲੇ ਦੁਖਿਆ ਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਲੀਨੀ ਦੁਰਮਤ ਪਦ ਖੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਈ, ਜੋਗੀ ਯੁਗਤ ਸਹਿਜ ਕਰ ਵਾਸੇ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਕੋ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਭੀਖਿਆ, ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ, ਰਹਾਉ ਪੰਚ ਬੈਲ ਗੜੀਆ ਦੇ ਧਾਰੀ, ਰਾਮਕਲਾ ਨਿਭੇ ਪਦ ਸਾਰੀ, ਧਰ ਟੂਟੀ ਗਾਡੋ ਸਿਰ ਪਾਰ, ਲੱਕੜੀ ਬਿਖਰ ਜਰੀ ਮੰਜ ਪਾਰ, ਗੁਰਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋਗੀ, ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰਨਾ ਸੋਗ ਬੇਯੋਗੀ, ਭੁਗਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਸਤਰ ਕੰਧ ਜਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਸਹਿਜ ਜਗੋਟਾ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਲੂਟਾ, ਮਨ ਮੈਂ ਮੁੰਦਰਾ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਜਨ ਤਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਗਤ ਜਨ ਤਰਨਾ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਰ ਕਰ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ, ਸਤਿਯੁਗ ਧਰਮ ਪੈਰ ਹੈ ਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰ, ਯੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਜੇ ਨਾਮ ਲਾਗੇ ਸੋ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਿਣ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਰਹਾਉ ਤ੍ਰੇਤੇ ਇੱਕ ਕਲ ਕੀਨੀ ਦੂਰ, ਪਖੰਡ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਜਾਣਨ ਦੂਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਸੋਜੀ ਹੋਈ, ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਵਸੇ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਦੁਆਪਰ ਦੂਜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏ, ਭਰਮ ਪਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਦੋਏ, ਦੁਆਪਰ ਧਰਮ ਦੋਏ ਪੈਰ ਰਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੜਾਏ, ਕਲਯੁਗ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਰਹਾਏ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੱਲੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅਤ ਗੁਬਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਨਾਮ ਉਦਾਰ, ਸਭ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਏਕੋ ਸੋਈ, ਸਾਮੈ ਸੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਚੀ ਕੀਰਤ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ਕੋਈ, ਸਭ ਯੁਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਯੁਗ ਯੁਗ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ, ਗੁਰਮ ਭਗਤ ਕਰੋ ਸਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਵੇ ਲਿਵ ਲਾਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਰਹਾਉ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਜਵੇਹੇ ਰਮਾਣਕ, ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਵੜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਵੜ ਮਸਤਕ, ਤੈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕੜ ਕੜ ਲੀਆ, ਰਤਨ ਜਵੇਰ ਲਾਲ ਹਰਨਾਮਾ, ਗੁਰ ਕਾੜ ਤਲੀ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਭਾਗਹੀਣ ਮਨ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਲੀਆ, ਤਣ ਓਲੇ ਲਾਕਸ਼ ਪਾਇਆ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਤਨ ਜਵੇਹਿਰ ਪਾਵੇ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਪਾਏ, ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਿਆ ਆਨੰਦਾ, ਹਰ ਨੀਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸਭ ਨੀਕਲ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਬੁੱਧ ਪਾਏ, ਰਾਮ ਜਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਬੁਲਾਏ, ਜੋ ਜੋ ਸੁਣੇ ਕਹੇ ਸੋ ਮੁਕਤਾ, ਰਾਮ ਜਪਤ ਸੋਹਾਏ, ਰਹਾਉ ਜੇ ਵਡਭਾਗ ਹੋਵੇ ਮੁਖ ਮਸਤਕ, ਹਰ ਰਾਮ ਜਨਾ ਭੇਟਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧ ਦੇਹੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਜਨ ਨੀਕੇ, ਭਾਗਹੀਣ ਨਾ ਸਿਖਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹੇ ਜਨ ਊਚੇ, ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੰਸ ਲਗਾਏ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਜਨ ਜਾਨੀ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਸਖਾ ਸਖਾਏ, ਸੇ ਹਰ ਕੇ ਚੋਰ ਵੇ ਮੁਖ ਮੁਖ ਕਾਲੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਜ ਨਾ ਪਾਏ, दया दया कर राखो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता परा मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के, तनि ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध सही प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम ओको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे, रहाओ हर के लोग राम जने उतम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवद चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे सेवड़ पागी, रिद मंतन प्रीत लगावे, बिन प्रीति करे बहु बाता, कूड़ बोल कूड़ो फल पावे। मोको तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी लै पावे, हो काटो काट बाड़ सैर राखो, जित नानक संत चढ़ आवे। राम कली महला चौथा, जे वड़ भाग होवे वड़ मेरे, जन मिलद्यां टिल ना लाइए, हर जन अमृत कुंड सरनी के, वड़ भागी तित नवाइए। राम मोको हर जन कारे लाइए, हो पानी पखा पीसो संत्यागे, पग माल मल तूर मुख लाइए, रहाओ हर जन वड़े वड़े वड़े ऊचे, जो सतगुर मेल मिलाइए, सतगुर जे वड़े अवर ना कोई, मिल सतगुर पुरख त्याइए। सतगुर सरन परे तन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए, एक अपने सुआए आए बहे गुर आगे, जो बगल समाध लगाइए। बगला काग नीच की संगत जाए, करंग बिखू मुख लाइए, जन नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। राम कली महला चौथा, सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे प्रीतम प्राण हर राया, हम चेरी होए लगे गुरचरनी, जन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। राम है हर हर नामन पाया, मैं हर बिन अवर न कोई बेली, मेरा पिता माता हर सिखाया, रहाओ मेरे एक खैन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया, तन तन बड़पा गुरसरनी आए, हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूजे बूजे, मन हर जप जपो जपाया, नामहीन फिरे से नगटे, तिन कस कस न कबड़ाया। मोको जग जीवन जी वाले स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया, नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम त्याया। राम कली महला चौथा, सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिलिए हरे और तारे, जी दान गुर पूरे दिया, हरे अमृत नाम समारे। राम गुर हर हर नाम कंड तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई, तन तन बड़ भाग हमारे, रहाओ कोट कोट तेती त्यावै, ताका अंत न पावे पारे, हृदय काम कामनी मांगे, रित मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा, गुरमुख रखो और तारे, जे वड़ भाग होवे तां जपिए, हर पौजल पारे उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे कंठ जन तारे, नानक पिता माता हर प्रभ, हम बारक हर प्रत पारे। राग राम कली महला पंजमा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुणा विचारो कोई, माटी का क्या तूपै स्वामी, मानस की गत एही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छे सोई फल पावो, फिर दुख न व्यापे कोई, रहाओ। काचे पाडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिख लिखिया तुर करते, हम तैसी करत कमाई। मन तन थाव किया सब अपना, एहो आमन जाना, जिन दिया सो चितना आवे, मोहे अंध लपटाणा। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का महल अपारा, भगत करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा, पवो चरना तली ऊपर आवो, ऐसी सेव कमावो, आपस ते ऊपर सब जानो, तोह दर गए सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी, सौर पवित्र नर दे पवित्रा, खिन बोलो गुरमुख बाणी, रहाओ पर पांच छोड़ सहज कर वैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलो नवें निध पावो, इन बिद तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लह लावो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर, किस खो कैस्यो करो बराई, सतगुर मिलिए मार्ग मुक्ता, सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिनी कल मैं हर पाया, जन नानक सतगुर मानी। राम कली महला पंजवा, आवत हरखना जावत दुखा, नह व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुर पूरा पाया, तो उतरी सगल बियोगनी। ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोगना व्यापे, तय हर हर हर रस भोगनी, रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा, पायाल पवित्र आलोगनी, आया आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे, जद कद पेखो हर गुणी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना, तह आकार नहीं मेदनी, सतगुर जो का तहाँ निवास जय अवगित नाथ अगम तनी तान मान हर का सब तान मान तन सब हर का हर के गुण हो क्या गणी कहो नानक हम तुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा अत्रै गुण रहत रहे नैरारी साधक सिद्ध न जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने अचरज किश कह न जाई बसते गोचर पाई रहाओ मोल नाही किस करने जोगा क्या को कहे सुनावे कथन कहण को सोजी नाही जो पेख्या तिस बने आवे सोई जाने करने हारा कीता क्या बेचारा अपनी गत मित आपे जाने हर आपे पूर भंडारा ऐसा रास अमृत मंचाख्या तृप्त रहे अगाई कहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई रामकली महला पंजवा अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे जैन बैरी है एव जग लूटिया ते बैरी लै बाधे सतगुर परमेसर मेरा अनेक राज भोग रसमाणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सैरी उपर रखवारा बेहर परवाह रहता स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होयो मिलो सखदाई ऊण न काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ न कत हूँ जाता वर्णना साको जैसा तू है साचे अलख पारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा रामकली महला पंजवा तू दाना तू अवजल तू ही जात मेरी पाती तू अडोल कद डोले नाही ता हम कैसी ताती एके एके एक तू ही एके एके तू राया तो कृपा ते सुख पाया रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम मैं माणक लाला तुम देवो तल संख न मानो हम पुंचो सदा निहाला हम बारिक तुम पिता हमारे तुम मुख देवो खीरा हम खेले सब लाड लडावे तुम सदगुणी गहीरा तुम पूर्ण पूरहे संपूर्ण हम पी संग गाए मिलत मिल मिल रहे मिलत मिलत मिलत मिल रहा नानक कह न जाए रामकली महला पंजवा कर कर ताल पखाव जनैनो माथे वजे रबाबा करनो मद बासरी बाजे जिहवा तुन अगाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कूगर साजा राम को नृतकारी पेखे पेखन हार दियाला जेता साज सिगारी रहाओ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोआ पवन विचोला करते अकेला जलते उपत हुआ पंच तत् कर पुत्रा कीना करते मिलावा हुआ चंद सूर दो जरे चरागा चौकण पीतर राखे दस पातो पंज संगीता एकै पीतर साथे पैन पैन होए भाव दिखावे सबो निरारी पाखे घर घर नृत होवे दिन राती कड़कड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए होए तूरा कहो नानक सो बोहर ना नाचे जिस गुर पेटे पूरा रामकली महला पंजवा ओंकार एक तुन एके एके राग अलापे एका देसी एक दिखावे एको रेहा ब्यापे एका सुरत एका ही सेवा एको गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुआओ रहाओ पंच बजेतर करे संतोखा साध सुरा ले चाले बाजा मान तान तज पाना पाओ न बीगा काले फेरी फेर न होवे कभी एक शब्द बंद पाले नारदी नर हर जान हदूरे कूकर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नृतकारी जन्म न आवे जे को अपने ठाकुर पावे कोट माधेहु कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक रामकली महला पंजवा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गोसैया कोई अलाहे करण करण कारण करण करीम कृपा तार रहीम रहाओ कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई ओढ़े नील कोई सफेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बाशे पिस्त कोई सरगिंदू कहो नानक जन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तन भेद जाता रामकली महला पंजवा पवने मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोवन हारे की कवन टेक कौन मुआरे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा ए तो चलत प्या रहाओ अगली किश खबर न पाई रोवन हार पी ऊट सदाई परम होके बांधे बंद सुपन प्या पखलाए अंध ए तो रचन रचिया करतार आप जात हुक्म अपार नह को मुआ न मरने जोग नह बिनसे अविनाशी होग ਜੇ ਉਹ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹ ਸੁਨਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਾਣੋ ਸੋ ਇਹੋ ਨਾਹੀਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਕੋਬਲ ਜਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚਕਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਇਆ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਪ ਗੋਬਾਨ ਜਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਜੀਵੈ ਫਿਰ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਮਹਾਂਕਾਲ ਰਹਾਓ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਭਰਮ ਆਇਓ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀਂ ਉਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਰਾਗ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਾਰ ਪਕਾਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਖੱਟ ਪੀ ਏਕਾ ਬਾਤ ਵਖਾਨੇ ਦਸ ਅਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਏਕੋ ਕਹਿਆ ਤਾਂ ਪੀ ਜੋਗੀ ਭੇਦ ਨਾ ਲਿਹਾ ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੇ ਜੋਗੀ ਆ ਮਤਵਾਰੋ ਰੇ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਥਮੇ ਵਸਿਆ ਸਤ ਕਾ ਖੇੜਾ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮੈਂ ਕਿਛ ਪਿਆ ਦੋ ਤੇੜਾ ਦੁਤੀਆ ਅਰਧੋ ਅਰਧ ਸਮਾਇਆ ਏਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਏਕ ਦਿਖਾਇਆ ਏਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਣੀਏ ਗਾਠੀ ਭਿਨ ਭਿਨ ਭਿਨ ਭਿਨ ਤਣੀਏ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁਵਿਦ ਪਾਏ ਖਿੰਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ ਚੌਹਮੈ ਏਕੇ ਮਟ ਹੈ ਕੀਆ ਤੈ ਬਿਖੜੇ ਥਾਨ ਅਨੇਕ ਖਿਖੜੀ ਖਿੜਕੀਆ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਉਂ ਕਿੰਕਰੀ ਅਨੂਪ ਵਾਜੇ ਸੁਣ ਜੋਗੀ ਕਹਿ ਮਨ ਮੀਠੀ ਲਾਗੈ ਰਹਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਗਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਥਿਗਲੀ ਲਉ ਨਾੜੀ ਸੂਆ ਹੈ ਅਸਤੀ ਅੰਬੇ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਧਰਿਆ ਕਿਆ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਗਰਭੈ ਭਰਿਆ ਜਪ ਨਾਥ ਦਿਨ ਰਹਿਨਾਈ ਤੇਰੀ ਖਿੰਥਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਰਹਾਓ ਗਹਿਰੀ ਬਬੂਤਲਾਏ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮਾਂਗੇ ਟੂਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਨਾਥ ਛੋੜ ਜਾ ਚੇਲਾਜ ਨਾ ਆਵੇ ਚਾਲ ਚਿਤ ਜੋਗੀ ਆਸਨ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੇ ਨਿਤ ਉਦਾਸੇਰਾ ਗੁਰਖ ਗੋਰਖ ਕੀ ਤੈ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਹੋਆ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰ ਕਪਾਲਾ ਨਾਮੇ ਖਿੰਥਾ ਨਾਮੇ ਬਸਤਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋਗੀ ਹੋਆ ਸਤਰ ਇਉਂ ਜਪਿਆ ਦਿਨ ਨਾਥ ਰਹਿਨਾਈ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ ਰਹਾਉ
1: ਦੂਜਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸੋਈ ਆਨ ਨਾ ਦਿਸੇ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗ ਮਨ ਐਸੋ ਰੇ ਹਰ ਰਸ ਮਿੱਠਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਡਿਠਾ ਰਹਾਉ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਏ ਨਿਹਕਾਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੰਸਾਰੀ ਕਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਲੱਖ ਵੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਵਾਜਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾੜਾ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦਿਖਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਪੜਦਾ ਟੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਬੂਠਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੇਵਕ ਲਾਇਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਦੇਵ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੋ ਹੋਂ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾਓ ਮਹਿਮਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਤੀਰ ਜਾਂ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਰਾਏ ਸੋ ਨਰ ਵੋਹਰ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਹੀ ਦੋਖ ਸੰਤਾਪ ਲਾਲ ਰਤਨ ਤਿਸ ਪਾਲੇ ਭਰਿਆ ਸਗਲ ਕੁਟੰਬੋ ਲੈ ਜਨ ਲੈ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕਿਛ ਭਰਮ ਨਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਏਕੋ ਏਕ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦਿਆਲ ਕਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਰਸਾਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਨ ਤੇ ਛੁਟਕੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਲੱਗੀ ਪਿਆਰੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਅਚਾਰਜ ਨੈਣੋ ਡਿਠਾ ਅਬ ਮੋਹੇ ਜਾਨੀ ਰੇ ਮੇਰੀ ਗਈ ਬਲਾਏ ਬੁੱਝ ਗਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਿਵਾਰੀ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਲੀਓ ਸਮਝਾਏ ਰਹਾਉ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖਿਓ ਗੁਰ ਸਰਣ ਗੁਰ ਪਕਰਾਏ ਹਰ ਕੇ ਚਰਣ ਬੀਸ ਬੁਸੀਏ ਜਾਂ ਮਨ ਠਹਿਰਾਨੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀ ਨੋ ਹਮ ਤਜ ਤਿਸ ਕੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਲ ਨਿਵਾਸ ਨਾ ਕੋ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਰਾਈ ਗਲ ਮਿਲ ਚਾਲੇ ਏਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਗੁਰ ਹਰ ਦੀਏ ਸੁਖਾ ਤਾਂ ਕੋ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦੁਖਾ ਆਪੇ ਆਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਨਾਨਕ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਗੋਪਾਲ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ मुख ते पढ़ता टीका सहत हिरदे राम नहीं पूरन रहत उपदेश करे कर लोक दृढ़ावे अपना कया आप ना कमावे पंडित वेद विचार पंडित मन का क्रोध निवार पंडित रहाओ आगे राख्यो साल ग्राम मन की नो दै दिस विश्राम तिलक चरावे पाई पाए लोक पचारा अंध कमाए खट कर मार आसन तोती भाग ठग्रह पड़े नित पोती माला फेरे मंगे भी बहुत ए विद कोय न तरियो मीत सो पंडित गुर शब्द कमाए त्रै गुण की ओस उतरी माए चतर वेद पुराण हर नाई चित कोट बिगन वेद पूर्ण हर नाई नानक तिसकी सारणी पाए राम कली महला पंजमा कोट बिगन नहीं आवे नेर अनक माया है ता की चेर अनक पाप ताके पाणी हार जा को माया पई करतार जिसे सहाई होए पणवान अनक जतन उआ कैस रंजाम लहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन ब्यांत महमा ताकी केतक वरण बल बल जाइए ताके चरण तिनकी ही किया जप तप ध्यान अनक प्रकार किया तिस दिन दान भगत सोई कल मैं

संग नहीं रे सगल पसारी, सोग हरख में देवर धानी, साकत ही भी करत बिहानी, हर का नाम अमृत कल माहे, एहो निधाना साधु पाए, नानक गुर गोबिंद जिस तोठा, कट कट रमैया तिन ही डेठा, राम कली महला पंजमा, पंच शब्द तै पूरन नाद, अनहद वाजे अचार्य विस्माद, केल करे संत हर लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्योग, सुख सहज आनंद पवन, साध संग वैस गुण गावे, तै रोग सोग नहीं जन्म मरण रहाओ, ऊहां सिमरे केवल नाम, बिरले पावे ओहो विश्राम, भोजन पाओ कीर्तन आधार, ने चलिया सन वे सुमार, डिग न डोले कतु न तावै, गुर प्रसाद को के हो महल पावे, भरम पै मोह न माया जाल, सुन समाध प्रभु किरपाल, ताका अंत न पहरा वार, आपे गुप्त आपे पसार, जाके अंतर हर हर स्वाद, कह न जाई नानक बिसमान, राम कली महला पंजमा, पेटत संग पार ब्रह्म चेत आया, संगत करत संतोख मन पाया, संत चरण माथा मेरो पौत, अनक वार संत डंडौत, इहो मन संतन कह बलिहारी, जाकी ओट गही सुख पाया, राखे किरपा तारी रहाओ, संत चरण तोये तोये पीवा, संत दर्श देख देख जीवा, संत है की मेरे मन आस, संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पड़दा, संत प्रसाद मुहे कभू न कड़दा, संत संग दिया किरपाल, संत सहाय पहे दयाल, सुरत मत बुद्ध परगास, गहर गंभीर अपार गुणदास, जी जंत सगले प्रितपाल, नानक संत देख निहाल, राम कली महला पंजमा, तेरे काज ना गृह राज माल, तेरे काज ना विखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब छले, हर हर नाम संग तेरे चले, राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत मेरी लाज रहे, हर सिमरत जम कछु ना कहे, रहाओ बिन हर सगल निरारथ काम, सोयना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा, नीहा उहां तेरो मूजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे, किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपे जन कोए, ताकि आसा पूरन होए, हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुरवान, राम कली महला पंजमा, सिंच दर्ब दे दुख लोग, तेरे काज ना अवरा जोग, कारंकार होए भरते अंध, जम की जेवड़ी तू आगे बंद, छाड़ बिडाणी तात मुड़े, इहां वसना रात मुड़े, माया के माते तय उठ चलना, राच रहो तू संग सुपना, रहाओ बाल विवस्था वार कंध, पर जोवन लागा दुर्गंध, तृतीया विवस्था सिंचे माए, विरद पया छोड़ चल्यो पछताए, चरंकहल पाई दुर्लभ दे, नाम बिहूणी होई खे, पशु प्रेत मुगद ते बुरी, तेसे न बूझे जिन ए सिरी, सुन करतार गोबिंद गोपाल, दीन दयाल सदा किरपाल, तुमे छडाबो छुटके बंद, बख्शम लावो नानक जागे अंध, राम कली महला पंजमा, कर संजोग बनाई काच, तिस संग रहो या नाराज, प्रित पारे नित सार संभाले, अंत की वार ऊठ सिधारे, नाम बिना सब झूठ पुराणी, गोबिंद भजन बिन अवर संग राते, ते सब माया मूठ पुरानी, रहाओ तीर्थ नाय नवतर समैल, कर्म धर्म सब होमे फैल, लोक पचारे गत नहीं होए, नाम बिहुणे चल सहर होए, नाम हर नाम न टूटस पटल, सोदे सहसर सिमरत सगल, सो नाम जपे जिस आप जपाए, सगल फला से सुख समाए, राखण हारे राखो आप, सगल सुखा प्रभ तुमरे हाथ, जित लावे तित लागे स्वामी, नानक साहिब अंतर जामी, राम कली महला पंजमा, जो कुछ करे सोई सुख जाना, मन समझ साध संग पत्याना, डोलन

तेजो का ठहराया, सात माइले सात समाया, दुख गया सब रोग गया, प्रभ की आज्ञा मन मैं मानी, महापुरख का संग पया रहो, सगल पवित्र सर्ब निर्मला, जो बरताए सोई पला, जय राखे सोई मुक्त थान, जो जपाए सोई नाम, अठ सठ तीर्थ जय साध पग तरे, तय बकुंठ जय नाम युचरे, सर्बानंद जब दर्शन पाइए, राम गुणा नित नित हर गाइए, आपे कट कट रया बे आप, दयाल पुरख प्रगट परताप, कपट खुलाने परम नाठे धूरे, नानक को गुर भेटे पूरे, राम कली महला पंजमा, कोट जाप ताप विश्राम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान, अनक रूप रंग भोग रसे, गुरमुख नाम निम खरीदे बसे, हर के नाम की वडियाई, कीमत कह न जाई रहो, सूर वीर धीरज मत पूरा, सहज समाध तुन गहर गंभीरा, सदा मुक्त तांके पूरे काम, जाके हृदय वसे हर नाम, सगल सुख आनंद रोग, समदर्शी पूरन निर्जोग, आए न जाए डोले कत नाही, जाके नाम बसे मन माही, दीन दयाल गोव्याल गोबिंद, गुरमुख जपिए उतरे चिंत, नानक को गुर दिया नाम, संतन की टहल संत का काम, राम कली महला पंजमा, बीज मंत्र हर कीर्तन गाओ, आगे मिली न थावे थाओ, गुर पूरे की चरनी लाग, जन्म जन्म का सोया जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय बासे, पौ जल पार परला रहाओ, नाम निधान त्याए मन अटल, तां छोटे माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा होए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बिचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध के संग, तन मन तन रापे हर के रंग, छोड़ सियाणप बौ चतराई, मन बिन हर नावे नकाई नकाई, दया तारी गोबिंद गोसाई, हर हर नानक टेक टिकाई, राम कली महला पंजमा, संत के संग राम रंग केल, आगे जम स्यों होए न मेल, अहंग बुद्ध का पया विनाश, दुर्मत होई सगली नास, राम नाम गुण गाए पंडित, कर्म कांड अंकार न काजे, कुशल सेती कर जाए पंडित रहाओ, हर का जस निद लिया लाव, पूरन पय मनोरथ साव, दुख नाठा सुख कर मैं आया, संत प्रसाद कमल विगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिन जन होए सगल निदान, संतोख आया पूरा मन पूरा पाए, फिर मांगन काहे जाए, हर की कथा सुनत पवित, जेहबा वक्त पाई गत मित, सो परवान जिस हृदय बसाई, नानक ते जन उत्तम पाई, राम कली महला पंजमा, गौ कर पकड़ी ना आई हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कौ नानक जो त्याग दई, तब ओ चरणी आए पही, सुन संतो निर्मल विचार, राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटे तो उधार, रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान, जब उसको कोई मन पर हरे, तब वो सेवक सेवा करे, मुख बेरावे अंत ठगावे, एक तठौर ओह कही ना समावे, उन मोहे बोते ब्रह्मांड, राम जनी किन्नी खंड खंड, जो मांगे सो भूखा रहे, इस संग राचे सो कछु न लहे, इसे त्याग सत संगत करे, वड़भागी नानक ओह तरे, राम कली महला पंजमा, आत्म राम सर्ब मैं पेक, पूरन पूर रहा प्रवेक, रतन मोल हृदय मैं जान, अपनी वस तू आप पछाण, पी अमृत संतन प्रसाद, बड़े पाग होवे तो पाइए, बिन जेहबा क्या जाने स्वाद, रहाओ अठ दस बेद सुने कह डोरा, कोट परगास ना दिसे अंधेरा, पशु प्रीत घास संग रचे, जिस नहीं बुलावे सो कित विद बूझे, जानन हार रहा प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान, बिगस बिगस अपना प्रभ गावै, नानक तिस जन नेड़ न आवै,
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੀਨੋ ਨਾਮ ਕੀਓ ਪਵਿੱਤ, ਹਰ ਤਨ ਰਾਸ ਨਿਰਾਸ ਏ ਵਿੱਤ, ਕਾਟੀ ਬੰਦ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਜਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਿਵਾਜਾ ਰਹੋ, ਆਏ ਬਨਿਓ ਪੂਰਬਲਾ ਭਾਗ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗ, ਗਈ ਗਲਾਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤੋ ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ, ਰਾਖੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲ, ਨਾ ਕਿਛ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਿਛ ਕਾਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੀ ਦਇਆ, ਬੂੜਤ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਕਾਢ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣੀ ਉਪਜਿਓ ਮਨ ਮੈਂ ਚਾਹੋ, ਆਟ ਪੈਰ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗਾਵਤ ਗਾਵਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਲਿਵਲਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗੇ ਰਤਨ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੂੰ ਕਾ ਜਤਨ, ਜੋ ਸਾਂਚੇ ਸੋ ਹੋਸੀ ਬਾਤ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਇਆ ਟੇਡੋ ਜਾਤ, ਅਪਾਗੇ ਤੇ ਲਾਜ ਨਾਹੀ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਿਦ ਨੈਣੋ ਡਿਠੀ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਹੰਕਾਰ ਰਿਜਾਨਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਨ ਵਿਛੁ ਅਡਸਨ, ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸਦ ਹੀ ਚੋਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਕਵੇ ਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਰ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ, ਸਭ ਸਾਹਾਂ ਸਿਰ ਸਾਚਾ ਸਾਹੋ, ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਪੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਲਪਟਿਓ ਭ੍ਰਮ ਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਨਕ ਤਰੀਏ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਆਗਹਿ ਧਰ ਗਹਿ ਪਾਵੋ ਥਾਉ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ, ਕੱਬੂ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਹੋਮੇ ਰੋਗ, ਖੋਜੋ ਸੰਤੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਿਸਮਨ ਵਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮੰਦ, ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਉ, ਗਨ ਮਿਨ ਦੇਖੋ ਸਗਲ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਸਕੇ ਨਾ ਤਾਰ, ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਨਾ ਚਾਲੇ ਸੰਗ, ਪਵ ਜਲ ਤਰੀਏ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਰੰਗ, ਦੇਹੀ ਧੋਏ ਨਾ ਉਤਰੇ ਮੈਲ, ਹੋਮੇ ਵਿਆਪੇ ਦੁਬਦਾ ਫੈਲ, ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਔਖਤ ਜੋ ਜਨ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੋਗ ਸਗਲ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਆਲ, ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨ ਵਿਸਰ ਗੋਪਾਲ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਹੋਮਾ ਤੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਰਦਾ ਪੂਰ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋ ਤੁਹਾ ਧਿਆਏ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਕਰਮ, ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਏਕਾ ਸਰਨ ਗਹੀ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਰਹਾਉ, ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਆਗੇ ਧਰ ਗੇ ਪਾਵੋ ਠਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ, ਦੁਰਮਤ ਬਿਨਸੇ ਰਾਚੇ ਮਨ ਵਸੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਨਿਤ ਜਪੈ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਫਾਹੇ, ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਸੱਚਾ ਤਨ ਲਾਹੇ, ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦਇਆ ਕਾ ਪੋਤਾ, ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੋਤਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਭੰਡਾਰ, ਖਾਤ ਖਰਚ ਕੁਛ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਰਹਾਉ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅਨਹਦ ਵਾਣੀ ਪੂੰਜੇ, ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੁੰਜੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਗੁਫਾ ਤੈ ਆਸਣ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਤੈ ਵਾਸਨ, ਭਗਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਤ, ਤੈ ਹਰਖ ਨਾ ਸੋਗ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਵਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਿਨ ਹਰ ਤਨ ਪਾਇਆ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੇਦ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਆਪ ਜਾਣੇ, ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਅਵਰ ਬਖਾਨੇ ਰਹਾਓ, ਸੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਪੇਵ, ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮਰਮ, ਸਭ ਉਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕਰਤਾ ਕੇਲ, ਆਪ ਬਿਛੋਰੇ ਆਪੇ ਮੇਲ, ਇੱਕ ਭਰਮੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਪ ਜਣਾਏ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ, ਨਹੀਂ ਲੇਪ ਤਿਸ ਪੁੰਨ ਨਾ ਪਾਪ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਛੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਓ ਜਾਨ,
सुरत मत नाही कुछ ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, पिछु न जानो कैसा कर्म। ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा वर न कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहो। रिद न बुद्ध न सिद्ध परगास, बिखे व्याद के घाब मैं वास। कारण हार मेरे प्रवेक, नाम तेरे की मन मैं टेक। सुन सुन जीवो मन हो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगनत जी का दाता, जिसे जनावे तिन तू जाता। जो अपायो तिस तेरी आस, सगल राधे प्रभ गुणतास। नानक दास तेरे कुरबान, बेअंत साहिब मेरा मेहरवान। राम कली महला पंजमा, राखण हार दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल राधे जंत। मिलिए गुर प्रभ गुर मिल मंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ। पूरन परमेश्वर स्वामी, कट कट राता मेरा प्रभ राव। ताकि गही मानी ओट, बंधन ते होई छोट। हिरदे जप पार वन आनंद, मन मैं पहे आनंद। तारन तरन हर सरण, जीवन रूप हर चरण। संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊच अपार। सो मत सार जित हर सिमरीज, कर कृपा जे सापे दीजे। सुख सहज आनंद हर नाओ, नानक जपया गुर मिल नाओ। राम कली महला पंजमा, छाड़ सियाणप सगल सियाणप छाड़। कर सेवा सेवक साज, अपना पाप सगल मिटाए। मन चिंदे सही फल पाए, हो सावधान अपने गुर स्यों। आसा मनसा पूरन होवे, पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ। दूजा नहीं जाने कोए, सतगुर निरंजन सोए। मानुख का कर रूप न जान, मिली न माणे माण। गुर की हर टेक टिकाए, अवर आसा सब लाहे। हर का नाम मांग निधान, तां दरगह पावे मान। गुर का वचन जप मंत, एहा भगत सार तत। सतगुर पहे नियाल, नानक दास निहाल। राम कली महला पंजमा, होवे सोई पल मान। अपना तहज अभिमान, दिन रहन सदा गुण गाओ। पूरन ही सुहाओ आनंद कर, संत हर जप। छाड़ सियाणप बहु चतराई, गुर का जप मंत निर्मल रहाओ। एक की कर आस पीतर, निर्मल जप नाम हर हर। गुर के चरण नमस्कार, भव जले उतरे पार। देवन हार दतार, अंत न पहरावार। जा के कर सर्ब निधान, राखण हर निदान। नानक पाया हो निधान, हरे हर निर्मल नाम। जो जपे तिसकी गत होए, नानक कर्म प्राप्त होए। राम कली महला पंजमा, दोलभ देस वार। जाए न दर गह हार, हालत पालत तुद होए वड्याई। अंत की बेला लय छुड़ाई, राम के गुण गाओ। हालत पालत बह होए दोमे सुहेले, अचार्य पुरख त्याओ रहाओ। उठत बैठत हर जाप, बिन से सगल संताप। बैरी सब होवे मीत, निर्मल तेरा होवे चीत। सब ते उतवेह कर्म, सगल धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म। हर सिमरन तेरा होए उदार, जन्म जन्म का उतरे पार। पूरन तेरी होवे आस, जम की कटिए तेरी फास। गुर का उपदेश सुनी जै, नानक सुख सहज समीजे। राम कली महला पंजमा, जिसके तिसके कर मान। आपन लहे गुमान, जिसका तू तिसका सब कोए। तिसे राध सदा सुख होए, काहे भरम भरमे विगाने। नाम बिना किछ काम ना वै, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहो। जो जो करे सोई मान लिहो, बिन माने रल हो वेखे। तिसका पाणा लागे मीठा, गुर प्रसाद विरले मन बूठा। बेपरवाह गोचर आप, आठ पहर मन ताको जाप। जिस चेते आए बिन से दुखा, हालत पलत तेरा उजल मुखा। कौन कौन उधरे गुण गाए, गण न जाए कि मन पाए। बूढ़त लहो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजमा, मन माए जाप भगवंत।
गुर पूरे हो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूरन होई आस। सफल सेवा गुरुदेवा, कीमत कुछ कह न जाई, साचे सच अलख अपेवा रहो। कारण करावण आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा कर नीत, सच सहज सुख पावै मीत। साहिब मेरा अत पारा, खिन मैं थापो थापण हारा, तिस बिन अवर न कोई, जानका राखा सोई। कर किरपा अरदास सुनी जे, अपने सेवक को दर्शन दीजे। नानक जापी जप जाप, सब ते ऊंचा जां का परताप। राम कली महला पंजमा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक। अवर छोटी सा बिहास, अचिंत ठाकर पेटे गुणतास। एको नाम ते आए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा। हर हर हर गुण गाए मन मेरे, रहो तुम ही कारण कारण। चरण कमल हर सरण, मन तन हर उही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव। सिमरत हर करत निधान, राखण हर निदान। सर्व की रेण हो वीजै, आप मिटाए मिली जै। अनदिन त्याये नाम, सफल नान के हो काम। राम कली महला पंजमा, कारण कारण करीम, सर्व प्रित पाल रहीम। अलै अलख अपार, खुद खुदाए वड वे सुमार। ओं नमो भगवंत गुसाई, खालक रव रया सर्व ठाई राव। जगन्नाथ जग जीवन माधो, पौ पंजन रिद माय अरादो। रिखी केस गोपाल गोबिंद, पूर्ण सर्वत्र मुकंद। मेहरवान मौला तू ही एक, पीर पैकाम्बर सेख। दिलां का मालक करे हाक, कुरान कतेब ते पाक। नारायण नर हर दयाल, रामत राम काट काट आधार। बास देव वस्त सब कढ़ाए, लीला कछ लखी न जाए। मेहर दया कर करणे हार, भगत बंदगी दे सिर जनहार। कौ नानक गुर खोए परम, एको अलो पार ब्रह्म। राम कली महला पांजमा, कोट जन्म के विन से पाप। हर हर जपत नहीं संताप, गुर के चरण कमल मन बसे। महाविकार तन ते सब नसे, गोपाल को जस गाओ प्राणी। अकथ कथा साची प्रभ पूरन, ज्योति ज्योत समाणी रहो। तृष्णा भूख सब नासे, संत प्रसाद जपिया विनासी। रैन दिन सप्रभ सेवक मानी, हर मिलने की एह निशानी। मिटे जंजाल होए सब प्रभ दयाल, गुर कर दर्शन देख निहाल। परा पूरबला कर्म बण आया, हर के गुण नित रसना गाया। हर के संत सदा परवान, संत जना मस्तक निशान। दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए। राम कली महला पंजवा, दर्शन को जाइए कुरबान। चरण कमल हिरदे तर त्यान, तोर संतन की मस्तक लाए। जन्म जन्म की दुरमत मल जाए, जिस भेटत मिटे अभिमान। पार ब्रह्म सब नदरी आवै, कर कृपा पूरन भगवान। रहाओ गुर की कीरत जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ। गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान। गुरवचनी समसर कुछ सुख दुख, कदे न व्यापे तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजे, जप गोविंद पढ़ दे सब काजे। गुर परमेसर गुर गोविंद, गुर दाता दयाल बख्शेंद। गुर चरनी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूरन भागा। राम कली महला पंजमा, किस परवासे विचरे पवन। मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नहीं जाने। पंच बट पारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत। गुण गोविंद रविये दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहो। जन्म बिहानो अंकार यारवाद, तृप्त न आवे विख्या साध। परमत परमत महा दुख पाया, तरी न जाए दुतर माया। काम न आवे सो कार कमावे,
आप भी जापे ही खावे, राखण को दूसर नहीं कोए, तो निस्तरे जो कृपा होए। पात तो पनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास को कीजे दान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, सरन गही नानक प्रभ तेरी। राम कली महला पंजमा, एह लोके सुख पाया, नहीं भेटत धर्म राया, हर दर गै सोभावंत, फुन गर्व नहीं बसंत, जाने संत की मित्राई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मलाई रहो, गौर के चरण चित लागा, धन धन संजोग सभागा, संत की तोर लागी मेरे माथे, तिलविक दुख सगले मेरे लाथे, साध के सच टहल कमाणी, तब होए मन शुद्ध प्राणी, जन का सफल दर्श डीठा, नाम प्रभु का कट कट बूठा, मिटाने सब काल कलेश, जिसते उपजे तिस माए परवेश, प्रगटे अनूप गोबिंद, प्रभ पूरे नानक बख्सिंद। राम कली महला पंजमा, गौ को चारे सार दूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी को हस्ती प्रत पाने, अपना प्रभ नदर निहाले, कृपा निधान प्रीतम प्रभ मेरे, वर्ण न साको बहुगुण तेरे रहो, देसत मास न खाए बिलाई, महाकसाब छुरी सट पाई, कर्ण हार प्रभ हिरदे बूठा, फाथी माशली का जाला टूटा, सोके काष्ट हरे चलोल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्नि निवारी सत गुर देव, सेवक अपनी लायो सेव, अकृत कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयान, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक शरणाई। राम कली महला पंजवां, पंज सिंह राखे प्रभ मार, दस बघिहाड़ी लई निवार, तीन वर्त की चूकी केर, साध संग चूके ते फेर, सिमर सिमर जीवां गोबिंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्सिंद रहो, दाज गए तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अंदर रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर तरियो बाछर खोज, खेद न पायो नै फुन रोज, सिंध समायो कट के माहे, कर्ण हार को किश्च अचार्य नाहे, जो छूटो तो जहे प्याल, जो काढ़ो तो नदर निहाल, पाप पन हमरे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाए। राम कली महला पंजमा, ना तन तेरा ना मन तोहे, माया मोह व्यापिया तोहे, कुदम करे गाडर ज्यों शेल, अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरणाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावै साच तना रहो, ऊणे काज न होबत पूरे, काम करोध मद सद ही चूरे, करे विकार जी रह कहताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तो अनक शल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर शाने, जिन दिए तिसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सोल, पार ब्रह्म जब पै दयाल, एहो मन होआ साधरवाल, हस कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचे साच समाए। राम कली महला पंजमा, राजा राम की शरणाए, निरपो पोए गोबिंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहो, जाके राम बसे मन माही, सोजन दुतर पेखत नाही, सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सो दास अंदेसा काहे करे, जन्म मरण की चौकी काण, पूरे गोरी ऊपर कुर्बान, गुर परमेसर पेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे, साध संग सो पव जल तरे, अमृत पीवो साध प्यारे, मुखी उजल साचे दरबारे, आनंद करो तज सगल विकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली महला पंजमा, ईदन ते बैसांतर पागे, माटी को जल दह दिस त्यागे, ऊपर चरण तले आकाश, घट में सिंध कियो परगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख न विसरे जी भगतन कै,
आठ पैर मन ताको जाप रहो। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सोध। पैते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौन हुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दिसे, सगले साज करत जगदीसे। ठगण हारियण ठगदा ठागे, बिन वक्र फिर फिरी उठ लागे। संत सवा मिल करो वख्यान, सिमरत सास वेद विपुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तांकी परम गत होए। राम कली महला पंजमा, ज्योतिष भावें सोथिया। सदा सदा हर की सरणाई, प्रभ बिन नाही आन बिया राओ। पुत कलत्तर लख मींदी से, इन मैं किछु न संग लिया। विखे ठगौरी खाए पुलाना, माया मंदर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत बिगोता, गर्भ जोन में किरत पया। पूर्व कवाणी छोड़े नाही, जम धूत ग्रास्यो महापया। बोले झूठ कमावे अमरा, तृष्ण न बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजा दुख संतन, देव विनाशी महाखया। जिसे निवाजे तिन ही साजे, आपे कीनो संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजमा, ऐसा पूरा गुरु देओ सहाई। जाके सिमरन व्यर्था न जाई रहाओ। दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तोर राखे काटे जमकाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो नाथ को नाथ। पात तो धारण कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुरबान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अभिमान। एक त्याय साध के संग, पाप बिनासे नाम के रंग। गौर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रव रया गुणतास। दर्स दे तारो प्रव्यास, नित नानक चित वे साचे अरदास। राग राम कली महला पंजमा, कर दूजा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए। आवा गौण मिटे मेरे मीत रहो। गुण गावत होबत प्रगास, चरण कमल में होए निवास। संत संगत में होए उधार, नानक भव जल उतर सपार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा। राम नाम जप सदा सुहिले, सगल बिना से रोग कूरा रहो। एक राधो साचा सोए, जाकी सरन सदा सुख होए। नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन से सब दुख। सहज आनंद करो मेरे पाई, गुर पूरे सब चिंत मिटाई। आठ पैर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आप। राग राम कली महला पंजमा, पड़ताल कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नर नरे नमस्कारन। जलन थलन बसोद गगन, एक एक अंकारन रहो। हरण धरण पुन पुने करण, न ग्रह निरहारन। गंभीर तीर नामहीन, ऊच मूच अपारन। कर्ण केल गुण अमोल, नानक बलिहारन। राम कली महला पंजमा, रूप रंग सुगंध भोग त्याग चले। माया शले कनक कामनी रहो। भंडार दर्ब अरब खरब, पेख लीला मन सधारे। न संग गामनी, सुत कलत्तर प्रात मीत। उर्ज पर्यो भरम मोयो, ए विरख शामनी। चरण कमल सरन नानक, सुख संत भावनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग राम कली महला नौवा। तिप दे रे मन ओट लियो हर नामा, जाके सिमरन दुरमत नासे। पावे पद निर्वाना रहाओ। बड़ पागी ते जन को जानो, जो हर के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप खोए के, फुन वैकुंठ सदावे। अजा मल को अंत काल में, नारायण सोध्याई। जांगत को बुझो की सर्वांछ, वाछत सोगत शिन में पाई। नाहिन गुण नाहिन कुछ विद्या, धर्म कौन गज कीना। नानक विरद राम का देखो, अवे दहन तह दीना। राम कली महला नौमा,
साधो कौन जुगत अब कीजे, जाते दुर्मत सगल बिनासे, राम भगत मन पीजे रहो, मन माया में उर्जे रहो है, बूझे न कुछ ज्ञाना, कौन नाम जग जाके सिमरै, पावे पद निर्वाणा, पये दयाल कृपाल संत जन, तब हे बात बताई, सर्व धर्म मानो तय की है, जय प्रभ कीरत गाई, राम नाम नर निसवासर में निमखे की ओर धरे, जम को त्रास मिटे नानक तै, अपनो जन्म सवारे, राम कली महला नौवा, प्राणी नारायण सोध ले, छिन छन औद कटे निसभासर, बिरता जात है ने रहो, तरन आपो विख्यान स्यों खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरद पहो जो नहीं समझे, कौन को महतोर जाना, मानस जन्म दियो जे ठाकर, सोत क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जाके सिमरे, निपख न ताको गायो, माया को मद कहाँ करत है, संग न कहूँ जाई, नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई, राम कली महला पहला, अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिन यर तप्त रहे, सात अरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे, जीवन ला तलब निवार, होवे परवाना रहे तिंगाना, कल लखन विचार रहो, किते देश न आया सुनिए, तीर्थ पास न बैठा, दाता दान करे तै नाही, महल उसार न बैठा, जे को सत करे सो शीजे, तप कर तप न होई, जे को नाओ लए बदनामी, कल के लखन ही, जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के से डरना, चाकर के ही डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना, आख गुणा का ले आईए, ते हो जुग केरा रया तपावस, जे गुण दे तां पाईए, रहाओ, काल कल वाली सरानी बेड़ी, काजी कृष्णा हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद थर्मण, कारणी कीरत लहया, पत विण पूजा, सत विण संजम, जत विण काहे जनेऊ, ना वो तो वो तिलक चढ़ावो, सोच बिन सोच न होई, कल परमाणक तेव कुराण, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ भया रहमान, कर करता तू एको जान, नानक नाम मिले वड्याई, एदू उपर कर्म नहीं, जेकर होंदे मंगण जाइए, फिर उलामा मिले तही, राम कली महला पहला, जग परबोधे मड़ी बंधावे, आसन त्याग काहे सच पावे, ममता मोह कामण हितकारी, ना उदूती ना संसारी, आसन त्याग काहे सच पावे, ममता मोह कामण हितकारी, ना उदूती ना संसारी, जोगी बैस रहो दुबदा दुख पागे, घर घर मांगत लाज न लागे राओ, गावे गीत न चीने आप, क्यों लागी निबरे परताप, गुर के शब्द रचे मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए, पासम चढ़ाए करे पखंड, माया मोह सहे जम डंड, फूटे खा पर भीख न पाए, बंधन वाध्या वै जाए, बिंद न राखे जति सहा कावे, माई मांगत त्रह लोभावे, निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख करे खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेले बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारे, बिन कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक मनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साधु लुभाना, पशु पहे नहीं मिटे निसाना, त्रैविध लोगा त्रैविध जोगा, शब्द विचारे चौकस सोगा, ओजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत बिचारे सोए, तुझ पै पौ निद तू करणे जोग, तुझ पै नौ निद तू करणे जोग, थापो थापे करे सोहोग, जत सत संजम सच सुचीत, नानक जोगी त्रै भवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तो निंतर जागी, बाजे अनहद मायरा मन लीना, सच बचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाइए,
गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए रहाओ, माया मोह विवार जस माए, सतगुर भेटे मेल मिलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, ते तराता मेरा मन तीरा, होमे ममता रोग न लागे, राम भगत जम कह पौ पागे, जा मंजदार न लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत पर हारी, आंदन जाग रहे लिबलाई, जीवन मुक्त अंतर गत अंतर पाई, अलिपत गुफा में रहे निरारे, तास्कर पंच शब्द संघारे, पार कर जाए न मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे ओ दूता, सद बिरहागी तत् परोता, जग सोता मर आवे जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, आनंद शब्द बजे तिन राती, अवगत की गत गुरमुख जाती, तौं जानी जा शब्द पछानी, एको रब रहा निर्वाणी, सुन समाध सहज मन जा राता, ताज हो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला, साहा गणे न करे विचार, साहे ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले सोई विद जाने, गुरमत होए ता हुक्म पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए, होमे जाए शब्द कर लहिए रहाओ, गण गण ज्योतक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत न चीनी, सबसे ऊपर गुरु शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली शार, नावे तो वे पूजे सैला, बिन हर राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रभ सारथ, मुक्त प्राण जप हर किरतारथ, बाचे बांध न वेद विचारे, आप डूबे क्यों पितरा तारे, कट कट ब्रह्म चीने जन कोई, सतगुर मिले त सोजी होए, गणत गणिये सह सा दुख जिये, गुर की सरन पवे सुख थीए, कर अपराध सरन हम आया, गुर हर भेटे पूर्व कमाया, गुर सरन न आईए ब्रह्म न पाईए, भरम पलाईए जन्म मारे आईए, जम दर वादो मरे विकार, नारी दे नाम ना शब्द अचार, एक पादे पंडित मिसर कहावे, दुबदा राते महल न पावे, जिस गुर प्रसादी नामे धार, कोट मदे को जाने अपार, एक बुरा भला सच एक है, बूझ ज्ञानी सतगुर की टेके, गुरमुख विरली एको जानिया, आवण जाना मेट समाणिया, जिनके हृदय के अंकार, सर्ब गुणी साचा विचार, गुर के पाणे कर्म कमावे, नानक साचे साच समावे, राम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया सीजे, बरत तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग कीजे, जम जदार जोहे नहीं साके, सरपन डस न सके हर का रस पीजे, रहाओ बाद पड़े रागी जस पीजे, त्रै गुण विख्या जन्म मरीजे, राम नाम बिन दुख सहीजे, चाड़स पवन सिंहासन पीजे, न्यूली कर्म खट कर्म करीजे, राम नाम बिरथा सास लीजे, अंतर पंच गन क्यों तीरज तीजे, अंतर चोर क्यों साध लीजे, गुरमुख होए काया गढ़ लीजे, अंतर मैल तीरथ परमीजे, मन नहीं सोचा क्या सोच करीजे, किरत पया दोस कां को दीजे, अन्न न खाए देही दुख दीजे, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं तीजे, मनमुख जन्मे जन्म मरीजे, सतगुर पूछ संगत जन कीजे, मन हर राचे नहीं जन्म मरीजे, राम नाम बिन क्या कर्म कीजे, उंदर धुंदर पास तरीजे, तुर की सेवा राम रवीजे, नानक नाम मिले किरपा प्रभ कीजे, राम कली महला पहला, अंतरी उत्पुज अवर न कोई, जो कहिए सो प्रभ ते होई, जुग जुगंतर साहिब सच सोई, उत्पत परलो अवर न कोई, ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर, जिन जपया तिन ही सुख पाया, हर के नाम लगे ना जम तीर रहो, नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहिब अमर अतोल, जह बा सोची साचा बोल, घर दर साचा ना ही रोल, इन विद मैं बैसे ठोगर डोगर स्थान,
नाम बिसार पचे अभिमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे धर गै मान। हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस प्याप ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे। जतन करे बिंद किमे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जम परवादो लय सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई। सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह न त्रिपतावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल अभिमान पेवा। कर्म मिले पावे सच नाओ, तुम शरणागत सहज सुभाओ, तुम ते उपजो भगती पाओ, जप जापो गुरमुख हर नाओ। होमे गर्भ जाए मन पीजे, झूठ न पावस पाखंड लीने कीने, बिन गुर शब्द नहीं कारवार, नानक गुरमुख तत् विचार। राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जामे वोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तत् तेता दुख लागे, नाम बिसार पब जल पया। तन तन देखत गर्व गया, कनक कामनी स्यों हेत बदाए, की नाम बिसारे परम गया रहाओ। जत सत संजम सील न राख्या, प्रेत पिंजर में कास्ट पिया, पुन दान स्नान न संजम, साध संगत बिन वाद जया। लालच लागे नाम बिसार्यो, आबत जाबत जन्म गया, जाता मताए केस गै मारे, सुरत नहीं मुख काल गया। ऐनस निंदा तात पराई, हिरदे नाम न सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। किन मैं वेस करे नटवा ज्यो, मोह पाप मैं गलत गया, इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन पया। करे विकार बिथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया। ओम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देखे, साकत मन अभिमान पया। जिसका ही हो तन धन सो फिर लेवे, अंतर सहसा दुख पया। अंत काल किच साथ न चाले, जो दिसे सब तिसे मया। आद पुरख परम्पर सो प्रभु, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए को रोवे किसे सुनावे, पैसा गरस रहल पया। देख कुटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जा आए ता तिने पठाए, चाले तिने बलाए लया। जो कुछ करना सो कर रया, बख्शण हारे बख्श लया। जिने राख्या राम रसायण, तिनकी संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुन ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते विरकत पया। आप मार गुरमुख हर पाए, नानक सहज समाए लया। राम कली दखणी महला पहला, जत सत संजम साच दड़ाया, साच शब्द रस लीना, मेरा गुर दयाल सदा रंग लीना। ऐनस रहे कलिव लागे, साचे देख पतीना रहाओ। रहे गगनपुर दृष्ट समय सर, अनहद शब्द रंगीना। सत बंद कुपीन भरपुर लीना, जिहबा रंग रसीना। मिले गुर साचे जिन रच राचे, किरत विचार पतीना। एक मैं सर्ब सर्ब मैं एका, ए सतगुर देख दिखाई। जिनकी ये खंड ब्रह्मांड, जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा, सो प्रभ लखन न जाई। दीपक ते दीपक परगास्या, तिर पवन ज्योत दिखाई। सच्चे तख्त सच मैली बैठे, निरपो ताड़ी लाई। मो गया वैरागी जोगी, घट घट किंगुरी वाई। सरन प्रभ नानक सरन प्रभ की छूटे, सतगुर सच सखाई। राम कली महला पहला, ओहठ हस्त मड़ी कर छाया, तरन गगन कल तारी। गुरमुख केती शब्द उधारी, संतो रहो। ममता मार होमे सोखे, तिर पवन ज्योत तुम्हारी। मनसा मार मने में राखे, सतगुर शब्द विचारी। सिंगी सुरत नाहद बाजे, कट कट जोत तुम्हारी। परपंच वेण तही मन राख्या,
ब्रह्म अगण पर जारी। पंच तत् मिल एहनस दीपक निर्मल ज्योति अपहरी। रव सस लोके तन किंगरी बाजे शब्द निरारी। शिव नगरी में आसन ऊंधो अलाख अगम अपारी। काया नगरी हो मन राजा पंच बसे विचारी। शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी। काल विकाल कहे कह वपरे जीवत मोआ मन मारी। ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूरत आपे करता कारी। काया सोद तरे पव सागर आत्म तत् विचारी। गौर सेवा ते सदा सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी। आपे मेल लय गुणदाता होमे तृष्णा मारी। त्रै गुण मेटे चौथे वरते एहा भगत निरारी। गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने हिरदे एक मुरारी। मनु मास्तर शब्दे राता एहा करणी सारी। वेद वाद न पखंड उदो गुरमुख शब्द विचारी। गुरमुख जोग कमावे उदो जत सत शब्द विचारी। शब्द मरे मन मारे उदो जोग जुगत विचारी। माया मोह पव जल है अवधु शब्द तरे कुल तारी। शब्द सूर जुग चारे उदो बाणी भगत विचारी। एहो मन माया मोया उदो निकसे शब्द विचारी। आपे बख्शे मेल मलाए नानक सारण तुम्हारी। राम कली महला तीजा अष्टपदियां इक्की ओंकार सतगुर प्रसाद। सरमे दियां मुंदरां कन्नी पाई जोगी खिंता कर तू दया। आवण जान विभूत लाए जोगी तां तीन पवन जिन लया। ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजे। हर स्यों रहे लिवलाए रहो सत संतोख पत कर चोणी। जोगी अमृत नाम पुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंगी सुरत बजाई। मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी तां तेरी कल्पना जाई। काया नगरी मैं मंगण चढ़े जोगी तां नाम पल्ले पाई। इत किंगरी ध्यान ना लागे जोगी ना सच पल्ले पाए। इत किंगरी सांत नावे जोगी अभिमान ना बिचों जाए। पाओ पाओ दोए पत कर जोगी इहो शरीर कर डंडी। गुरमुख होवे तां तंती बांजे इन विद तृष्णा खंडी। हुक्म बूझे सो जोगी कहिए एक स्यों चित लाए। सहसा टूटे निर्मल होवे जोग जोग ते बपाए। नदरी आपदा सब कुछ बिनसे हर से ती चित लाए। सतगुर नाल तेरी भावनी लागे तां ए सोजी पाए। एहो जोग न होवे जोगी जे कुटंब छोड़ पर पवन करे। ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड़ा तृष्णा माया। अनेक जतन जतन भेख करे जोगी रोग न जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन बसाए। गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जोगत सो पाए। जोगे का मार्ग विखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए। अंतर बाहर एको वेखे बिचों परम चुकाए। बिन बजाए किंगरी वाजे जोगी सा किंगरी बजाए। कहे नानक मुक्त होवे जोगी साचे रहे समाए। राम कली महला तीजा। भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई। संतो गुरमुख दे वड्याई रहो सच रहो सदा सहज सुखी उपजे। काम क्रोध बिचों जाई। आप छोड़ नाम लिब लागी ममता शब्द जलाई। जिसते उपजे तिसते बिनसे अंते नाम सखाई। सदा हजूर दूर न देखो रसना जे नरचाई। सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे स्यों लिवलाई। सत संगत में नाम निर्मोलक बड़े भाग पाया जाई। परम न भूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई। बिन नावे सब भूली फिर दी बिरथा जन्म गवाई। जोगी जुगत गवाई हंड पखंड जोग न पाई। शिव नगरी में आसन बैसे जो गुर शब्दी जोग पाई। तातर वाजी शब्द निवारे
ਨਾਮ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਈ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਬਿਨ ਸਜਾਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਪਰਮ ਪੁਲਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੋਟੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵਲਾਈ, ਪੰਡਿਤ ਪੜੇ ਪੜ ਵਾਦ ਵਖਾਣੇ ਤਿੰਨਾ ਬੂਜਨ ਪਾਈ, ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਕਿਸ ਪਾਈ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ, ਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਸੋ ਗਤ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਵ ਨਵਨ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤ ਕਰਾਈ, ਲੋਇਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਨੀ ਚਿੱਤ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ, ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਿਰਾਲਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਹੋਮ ਗੁਰ ਸਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਨਾਨਕੇਕ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾ ਵੋ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਕਛ ਨ ਜਾਈ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤ ਕਿਆ ਹੋ ਪੂਜ ਚੜਾਈ, ਹਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ ਸਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨ ਮੁਖ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ, ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇ ਜਨ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨ ਹੋਵੇ ਭਰਮ ਪੁੱਲੀ ਲੁਕਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਥਾਏ ਪਾਈ, ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਵਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਲ ਕਾ ਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੇ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਸੰਤ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਖਾਈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਸੰਤ ਕੂੜ ਕਰੇ ਵਡਿਆਈ, ਪਖੰਡ ਕੀ ਨੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪੰਤ ਗਵਾਈ, ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਗਤ ਮਿਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਬਖਾਣੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ ਦਰ ਸਾਚੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਾਚ ਬਖਾਣੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ, ਭੈ ਪੰਜਨ ਅਤ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸਖਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਮ ਕੁਛ ਹਲ ਕੁਛ ਹੀ ਲੱਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਿਲ ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੀ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਕਟ ਅੰਤਰ ਕਰਤੇ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਰਹਾਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਹਰ ਜਿਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੇਖ ਕਰੇ ਫਿਰੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਿੰਨ ਜੂਏ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਹਾਰੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਮੇ ਮਾਰੀ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕਭੀ ਭੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ, ਤਿਸ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰ ਜੀਉ ਸਲਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਰਾਰੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਕੁੱਟ ਸੱਚੇ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁਠਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਲ ਤਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਾਗੇ ਗਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਭਉ ਜਲ ਪਹਾਰੀ ਉਤਾਰੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਰ ਨ ਪਾਵੇ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ, ਕਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ,
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਖੋਜੇ ਸਹੀ ਪਾਵੇ, ਹੋਰ ਫੂਟ ਮੂਏ ਅੰਕਾਰੀ, ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੇ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੀ, ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਹੋਮੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰੀ।

रातहस्तियास्वस्त्रामिथ मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोहमो विमान मिथ्या पशु पर कर्तुगुमान अस्थिर।

संग परीत। जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा पज हर की शरणी। अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए।